0: मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ समीरा, सिर्फ तुम्हारा।

अनूप जलोटा और अनीता खंडेलवाल के स्वरों में आप ये भक्ति रचना सुन रहे थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। दोस्तों, आज जाने माने संगीतकार खयाम की याद का दिन है। आइए सुने ये रचना बेगम अख्तर की आवाज में, सुदर्शन पाकिर के बोल है।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

उषा मंगेशकर, भूपेन हजारिका और हेमंती शुक्ला की आवाजें थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजें सुनिए। एल्बम का नाम है ये प्यार का मौसम है।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा। आज फिर सीने में उलझी हुई वजनी सांसें फट के बस टूट ही जाएंगी, बिखर जाएंगी। आज फिर जागते गुजरेगी तेरे ख्वाब।

तुलसी कुमार और जुबिन नौटियाल की आवाजों में आप सुन रहे थे ये नॉन फिल्म एल्बम से गीत। कुणाल वर्मा के बोल थे। पेश खिदमत है जगजीत सिंह की आवाज, कैफ भोपाली के बोल हैं। प्रोग्राम है रंग तरंग।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। फिल्म है दिले नादान, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें, नक्श लालपुरी के बोल, खयाम का संगीत। आज संगीतकार खयाम की याद का दिन है।

चंबल की कसम इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल थे, खयाम का संगीत था। आइए सुने आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गीत सुलक्षणा पंडित की आवाज में। नक्शलालपुरी के बोल, खयाम का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना। संगीतकार थे खयाम, फिल्म थी मोहब्बत इसको कहते हैं। आज का ये प्रोग्राम खयाम साहब के नाम।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, तोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
1: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
0: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

0: लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाजें थी। मखदूम मोहिउद्दीन के बोल थे, खयाम का संगीत था, फिल्म थी बाजार। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, तोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, CID, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
2: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं। इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। तो आज आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम मेरे साथ, यानी रेडियो सखी के साथ। अब वो जो इबारत है वो मैं पढ़ के सुना दूं, क्योंकि बहुत सारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े नहीं हैं, तो उन्हें भी पता चल जाए कि आज की इबारत क्या है और इबारत से जुड़े हुए शब्द, मतलब इसमें जो शब्द होते हैं उनसे जुड़े गाने आपको ढूंढने हैं और लिखने हैं। चांदनी रात बहुत खामोश थी, आकाश पर चांद और तारे चमक रहे थे। खिड़की के पास बैठी वो देर से दूर उसी तारे को देख रही थी। जाने क्यों उसे लगता था कि उस चमक में कोई पुरानी याद छिपी है। टेबल पर एक तस्वीर रखी थी, तस्वीर में दो लोग थे, कभी बहुत पास आज बहुत दूर। उसने गुनगुनाया, आप यूं फासलों से गुजरते रहे। उन दिनों का दीवानापन भी कितना अजीब था। एक आवाज पर दिल धड़क उठता था, एक नजर पूरी रात जगा देती थी, फिर न जाने कब रंजो गम ने प्रेम की जगह ले ली। वो तस्वीर उठाकर देर तक देखती रही, मन ही मन जैसे कोई गीत बज उठा, चोरी चोरी कोई आए चुपके चुपके, काश कोई सचमुच आ जाए, दरवाजे पर दस्तक दे और कहे कि इतने वर्षों की दूरी शायद बस एक भूल थी। मगर दरवाजा खामोश था, सिर्फ हवा पर्दों को हिला रही थी। उसने तस्वीर को सीने से लगा लिया, आप और हम या तुम और हम, कभी यही तो एक पूरी दुनिया थी। अब तस्वीर में बची दो मुस्कुराती आंखें थी और उन आंखों के पीछे छिपी एक अधूरी कहानी। तभी उसकी नजर फिर उस तारे पर गई, वो अब भी चमक रहा था। उसे लगा शायद प्रेम कभी खत्म नहीं होता, लोग दूर चले जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, तस्वीरें पीली पड़ जाती हैं, लेकिन किसी रात किसी अकेली खिड़की के बाहर वही प्रेम एक तारे की तरह टिमटिमाता रहता है। उसने तस्वीर को वापस मेज पर रखा और धीमे से कहा, इस तरह तोड़ा मेरा दिल कि अब दर्द भी तुम्हारी याद जैसा प्यारा लगता है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, आप भी चाहें तो बुन सकते हैं कहानी, लेकिन साथ में जरा वो जो तारों वाली बात है कि उसकी नजर फिर उस तारे पर गई। तो बचपन में बहुत सारे तारे देखते थे एक साथ आंगन में लेटकर चारपाई पर, ऐसा ही एक गाना भी है गुलजार साहब का लिखा हुआ। बहरहाल वो गाना तो याद कीजिए, लेकिन तारों वाले गाने तो बहुत सारे आपको लिखने ही है, साथ में वो याद साझा कीजिए कि जब तारे गिनते थे तो आसमान में तारे गिनते गिनते संख्या भूल जाते थे और तारे वहीं के वहीं रह जाते थे। तो कई बार सप्तऋषि तारा और तारों के कई नाम हम गिनाते थे, ध्रुव तारा, वो देखो वो ध्रुव तारा है, वो सप्तऋषि तारा। तो ऐसी कोई याद है तो वो जरूर साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। चलिए अब गानों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहेलियों का। पहेलियां भी तो बूझनी है, जरा बताइएगा कि किस फिल्म का ये गाना है और गीतकार का नाम क्या है। संगीतकार का नाम तो आप बूझ चुके हैं, आज उनकी याद का दिन है जिन संगीतकार का ये गाना है। वैसे बूझिए आप गीतकार संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम। पहली आसान तो है ना, ये गाना तो आप पहले बहुत बार सुन चुके हैं।

शंकर हुसैन फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, जानिसार अख्तर के बोल थे, खयाम का संगीत था। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना है, सही जवाब दिया है। बहुत सारे श्रोताओं ने शब्द लिखे हैं, चांदनी, फासले, रात, रंजुगम, चोरी चोरी, तुम और हम, आंखों, मौसम, याद हो सकते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने तारे से जुड़े हुए बहुत सारे गाने लिखे, तारे से जुड़े हुए अनुभव नहीं साझा किए हैं। और चांदनी रात की एक खूबसूरत बात होती है, जब चांदनी रात में घूमने निकलते हैं तो उसका कुछ अलग ही आनंद होता है। उससे जुड़ी हुई बहुत सारी यादें होंगी, वो भी आप साझा करते रहिए। अब हम आपने क्या लिखा है वो हम बताते चलते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेम में कई बार सुबह आने से पहले ही रात बहुत अंधेरी लगने लगती है, और खासकर तब जब हमें अपने प्रेम का इंतजार हो। प्रेम जब एक तरफ से कम होने लगे तो सबसे पहले मन स्वीकार करने से इनकार करने लगता है, और हम तरह तरह के ख्याल में डूब जाते हैं। प्रेम में इंतजार का कोई आकार नहीं होता, वो तो हवा में घुल जाता है, आंखों में ठहर जाता है। कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते। वो दिल तोड़कर चला गया, लेकिन क्या इस तरह जाने से प्रेम खत्म हो गया? प्रेम बड़ी गहरी चीज है। प्रेम में आकर्षण तो वक्ती है, फर्क इतना है कि तुम प्रेम में कितने गहरे तक डूबे हो। बात बहुत साधारण है, ऐसा क्यों होता है जब कोई एक प्रेम के सहारे सदियां बिताने का मादा रखता है और दूसरा दिल तोड़कर चला जाता है? लेकिन इसमें बड़ा कौन होता है, दिल तोड़कर चला जाने वाला या जो आखिर तक प्रेम करता रहता है, जरा ये भी बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि आज दोपहरी दो प्रेमियों की दोपहरी होगी, जहां उनके मिलने बिछड़ने के किस्से होंगे, उनके रोमांस की बातें होंगी, गिले शिकवे होंगे। चांदनी रात में अकेला कोई महबूब की तस्वीर सीने से लगाए तरह तरह के सवाल जवाब कर रहा होगा। उसका गया महबूब अब तक आया नहीं, फिर क्या वो अब नहीं आएगा? आखिर कब तक कोई एक तारे में महबूब की आकृति तलाशती रहेगी? क्या वो सचमुच नहीं आएगा? ये तो आपको बताना है कि वो महबूब आएगा, दरवाजे पर जो दस्तक हुई थी सचमुच कोई आया या नहीं। बहरहाल चलिए आगे बढ़े, और अब आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम। फिल्म है नूरी, और इसमें कौन कौन से शब्द आ रहे हैं आज की इबारत के, बताइए, और साथ में हीरो हीरोइन का नाम बूझिए।

नूरी फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, जानिसार अख्तर के बोल खयाम का संगीत था और बहुत सारे श्रोताओं ने इसका जवाब सही दिया है। फारूक शेख और पूनम ढिल्लन इस फिल्म में होते हैं हीरो हीरोइन और बहुत जल्द जवाब हमारे श्रोताओं ने दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये दिलकश चमकते सितारे भला किसे नहीं सुहाते हैं, बचपन से ही ये दिलों को लुभाते हैं, टूटते हुए तारे मन में एक सवाल सा जगाते हैं कि टूट के आखिर कहां तलक जाते हैं। ये भी बताइएगा कि बचपन में जब तारों भरी रात में जागकर देखते थे आंगन में खाट डालकर, तो कौन कौन से तारे आप गिनते थे, उन तारों के नाम अगर याद है तो बताइएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि अगर दिल तोड़ने का किसी की भलाई के लिए है तो वो बड़ा है, वरना तो अंत तक निभाने वाला सही है। देखो ना ममता जी, आटे वाले हाथ धोकर लिखना पड़ रहा है, क्या बात है भाई। ये तो आपका जुनून है और आपका प्यार है, खुलूस है, मोहब्बत है विविध भारती के प्रति जो ऐसा करवा रहा है। और हमें ये जानकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि कमेंट लिखने के लिए, टिप्पणी लिखने के लिए आपको हाथ होना पड़ा। कोई बात नहीं, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जहां हीरोइन आटा गूंथ रही है और दरवाजा बेल बजती है, घंटी बजती है, तो बाल पीछे करती है और आटा बाल में लग जाता है, लट में। वो कौन सी फिल्म है अगर याद है तो जरा नाम लिखिएगा। बहरहाल हम आपकी टिप्पणी एक दो और पहुंचा दें आप तक। एक श्रोता ने लिखा है कि आज खयाम साहब के खूबसूरत

एहसास कराते थे। शास्त्रीय और लोक संगीत का मेल उन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत का अनूठा संतुलन बनाया। कम शोर ज्यादा सुकून उनकी धुनों में और पश्चिमी या भारी शोर की बजाय ठहराव, खामोशी और रूहानी मिजाज होता था। अब हम आपको चोरी चोरी फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं जिसमें चांदनी है, चांदनी रात है और साथ में एक पहेली हम पूछ रहे हैं आपसे। इस पहेली को आप देखते हैं कि बूझ पाते हैं कि नहीं। कौन सा एक गीत है जिसमें चांदनी रात है, इतराना है, खुद से शर्माना है और ऐसे शब्द हैं। फिर देखा है ये शब्द भी है, नीला अंबर शब्द है। आपको गाने के बोल अगर याद आए तो लिखिए, फिल्म का नाम लिखिए, हीरो हीरोइन कौन थे ये भी आपको ही लिखना है। जरा याद कीजिए, फिर से दोहरा देते हैं हम आपको। जिसमें चांदनी रात है एक गाना, अभी एक गाना सुनवाएंगे चोरी चोरी फिल्म का जिसमें चांदनी रात है। इसके अलावा एक गाना और है जिसमें चांदनी रात है, खुद से शर्माना है और देखा है कई बार, नीला अंबर शब्द है और आज की यादों की महफिल कार्यक्रम में वो गाना हमने आपको सुनवाया भी था। चलिए सुनते हैं ये गाना।

कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण बीच में विघ्न आया, इसके लिए हम माफी आपसे चाह रहे हैं। चोरी चोरी फिल्म का गाना ये रहा। आपको बूझना है गीतकार का नाम।

चोरी चोरी फिल्म का गाना था और इसमें चांदनी है, मधुर चांदनी है, और बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे पहेली का जवाब बिल्कुल सही दिया है। हमारी पहेली ये थी कि कौन सा ऐसा गीत है इस गाने के अलावा जिसमें चांदनी रात है, इतराना है, खुद से शर्माना है और देखा है नीला अंबर शब्द है। हमारे श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दे डाला है इसका, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, फिल्म दिले नादा, और इसमें हीरो हीरोइन जया प्रदा और राजेश खन्ना होते हैं, और बहुत ज्यादा तादाद में इसका जवाब आया है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपने पहचान लिया। और हमने आपसे पूछा था कि वो हीरोइन है जो आटा लगा है हाथ में, दरवाजा खोलने जाती हैं और वो बालों में लग जाता है, लट में उनके आटा लग जाता है, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है बॉबी, फिल्म बॉबी में डिम्पल हैं, बेसन से सने हुए हाथ से ऋषि कपूर के लिए दरवाजा खोलती हैं। क्या बात है भाई, बहुत सारी फिल्में आपने देख रखी है और जानकारियां बहुत समृद्ध है, हम भी समृद्ध हो रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है जानकर। और एक श्रोता ने लिखा है कि 1955 में बचपन में जब गर्मियों के दिन बस एक तारे पर सबसे पहले खाट पर सोने जाते थे, वो सबसे चटक चमकने वाला तारा रहता था, उसे हम जरूर बचपन में देखते, और जब कोई तारा भागता यानी चलता था तो हम सब भाई बहन मिलकर कहते देखो तारा भाग रहा है, कुछ देर बाद वो गायब हो जाता था। और कई श्रोताओं ने ये तारा वो तारा गाने के बोल लिखे हैं, और बहुत सारे श्रोताओं ने ये जवाब दिया है बॉबी, फिल्म बॉबी में डिम्पल होती है। और एक श्रोता ने लिखा है चिट्ठी ने कोई संदेश न जाने कहां तुम चले गए, और फिर एक श्रोता ने लिखा है चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है, खुद से शर्माते हुए, ये गीत है फिल्म दिले नादा का, राजेश खन्ना और जया प्रदा। और एक श्रोता ने लिखा है थोड़ी सी बेवफाई, चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है। मतलब हमारे श्रोताओं ने इस पहेली का जवाब बिल्कुल सही दिया, सही सही दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में छत पर चारपाई डालकर हम सोते थे, हमारी मम्मी हमें तारों के बारे में बताती थी और बताती थी कि ये सप्तऋषि तारा है, ये ध्रुव तारा है, उनके बारे में मैं एक तारे कैसे बने ये भी बताती थी कि तारे कैसे बने, सुनकर मैं रोमांचित हो जाता था, अब वो दुनिया नहीं रही, अब भी छत है, आंगन है, लेकिन वक्त नहीं है तारों को देखने के लिए, क्योंकि अब एक दुनिया है, वो है स्क्रीन की दुनिया, मोबाइल की दुनिया, कंप्यूटर की दुनिया, उसी में आप सब कुछ देख लेते हैं, तो कुदरत के पास जाने के लिए वक्त ही नहीं है। तो आप जरा याद कीजिए और बताइए कि पिछले दिनों आसमान के तारे को आपने कब देखा था, आसमान में निकलते हुए चांद को कब देखा था, कब आप चांद से बतियाए थे। अगर आपको तारीख नहीं आ तो ये बता सकते हैं कि पिछले हफ्ते, पिछले महीने, बताइएगा ईमानदारी से। अब बाजार फिल्म का ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम और साथ में संगीतकार का नाम भी। इबारत का कौन सा शब्द इसमें आ रहा है?

0: बाजार फिल्म की ये गजल थी, भूपेंद्र की आवाज, बशर नवाज के बोल थे, खयाम का संगीत था। संगीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही बताया है और ये भी बताया है हमारे श्रोताओं ने। बाजार में नसरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक, स्मिता पाटिल और फारूक शेख। और एक श्रोता ने लिखा है कि कल रात ही हमने तारे का नजारा देखा, जब दुकान मंगल कर दी तो मैंने देखा मौसम साफ है। और एक श्रोता ने लिखा है कि 1981 में फिल्म उमरा और जान, 1982 में बाजार और 83 में रजिया सुल्तान, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जो फिल्में नहीं बल्कि धुनों का महाकाव्य हैं। और सभी और भी श्रोताओं ने लिखा है फिल्म बाजार का बेहतरीन गीत, भूपेंद्र की आवाज बहुत अच्छी लग रही है। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि इस इबारत से याद शब्द से ही गाना था। और एक श्रोता ने लिखा है कि 16 आने सच्ची बात मैं बता रहा हूं, मुझे बनारस से अपने गांव आजमगढ़ जाना होता है, तभी मैं निकलते हुए सूरज को देख पाता हूं और हमें 2 महीने हो गए निकलते हुए सूरज को देखे हुए। क्या बात है, बड़ी ईमानदारी से आपने अपनी बात कह दी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। एक श्रोता ने लिखा है कि करोगी याद तो हर बात याद आएगी, परीक्षा देते समय ये बात क्यों याद नहीं आती है। भाई ठीक से पढ़ेंगे तो याद आएगी ना, तो ध्यान से पढ़िए। जैसे कि गाने ध्यान से सुनते हैं और याद आ जाती है, फिल्म के सीन याद आ जाते हैं, वैसे आपको पाठ्यक्रम की बातें भी याद रहेंगी। एक श्रोता ने लिखा है कि सचमुच ही सावन की बौछार जैसे महसूस कर रहे नजर आ रहे हैं, जो दिल को सुकून पहुंचा रहे हैं, पानी की बूंदें छमछम करती हैं, जो इस कार्यक्रम को रंगारंग बना रही हैं, ये बरसात का मौसम बहुत कुछ बया करती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो मेलोडियस सॉन्ग आज हम सुन रहे हैं, वही गीत हम उन दिनों अपने छत पर सुना करते थे रेडियो ट्रांजिस्टर के साथ। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लग रहा जानकर। और एक श्रोता ने लिखा है कि चांद तारे तो रोज ही देखते हैं रात को, आकाश में चांद तारे न दिखे तो लगता है कि आज बारिश फिर आएगी। और एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल चांद तो कभी कभी दिख जाता है पर तारे एकदम से नहीं दिखते, बादल बहुत रहते हैं। बचपन वाली बात भी बताइए कि जब तारों को लेकर पहेलियां बुझी जाती थी कि ये कौन सा वाला तारा है, और अगर कोई गलत बताए तो शर्त लगती थी, फिर कुछ पैसों की शर्त लगती थी या फिर कुछ काम करने की शर्त लगती थी कि अगर गलत जवाब दिया तो वो कल फिर कोई काम सौंप दिया जाता था कि ये हिस्सा, अलमारी का हिस्सा साफ सफाई करोगे या आंगन बुहारोगे, या ये सजा भी होती थी। तो इस तरह की कोई याद आपके जहन में है तो जरूर साझा कीजिए। फिलहाल माया फिल्म का गाना सुनिए और बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।
1: तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन

माया फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें थी। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सलील चौधरी का संगीत था। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और एक श्रोता ने लिखा है कि जब छोटे थे तो दीदी के गांव जाया करते थे। छत पर खटिया डालकर तारे गिना करते थे और आपस में चाची की लड़कियां हम सब बहनें मिलकर यही कहती थी कि तूने कितने तारे गिने। आज वो दिन है कि तारे आसमान पर दिखाई नहीं देते, गिने या देख भी ले तो ऐसा लग रहा है कि बरसों बीत गए तारे नजर आए हुए। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि जो पिछला गाना सुनवाया था याद को लेकर और अभी तस्वीर को लेकर ये गाना सुनवाया है। और जब बात तस्वीर की चली है तो तस्वीर से जुड़ा हुआ और कौन सा गाना इस वक्त

आपके जहन में गूंज रहा है, हो सकता है आपका वो गाना यहां पर हम बजाते हैं अभी तुरंत। और एक श्रोता ने लिखा है कि पहले हमारी नानी जी हमेशा तारा देखकर ही शाम का खाना खाती थी। तारे को पहले दर्शन करके, तारीख को पहले दर्शन करके उसका भोग लगाकर खाती थी। भाई चांद को देखकर खाना खाने की परंपरा के बारे में हमें पता है कि जब कोई व्रत त्योहार होता है, कोई खास त्योहार जैसे करवा चौथ का व्रत है, तो महिलाएं चांद देखकर खाना खाती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि छोटे छोटे तारों के साथ चांद बड़ा ही अपना लगता है, हमें बहुत सारी बातें हम याद करते हैं चांद से जुड़ी हुई, पर वो हमारी बातों का जवाब नहीं देता। चांद से बहुत सारी बातें पूछते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देता, बस महसूस जरूर होता है कि वो हमें सुन रहा है, पर कभी तो एक छोटा ही सही जवाब देना चाहिए ना। हम रोज देखते हैं कि मगर कई दिनों से हमें चांद दिखा ही नहीं, कल ही हम आसमान में देखकर आसमान से पूछ रहे थे कि हमारे चांद को कहाँ छुपा रखा है। भाई चांद से तो सभी बतियाते हैं, बचपन में तो चांद के जो चांद में परछाई दिखती है, लोग कहते थे कि कोई वो बुढ़िया है जो सूत काटती है, और कई गानों में भी, कई कविताओं में भी ये बात आती है। तो चांद से जुड़ी हुई तो बहुत सारी बातें हैं हमारे जहन में, बहुत सारी पहेलियां हैं। आपके जहन में कौन सी बात है वो आप साझा कीजिए। हाँ तो आपने तस्वीर वाला गाना याद किया क्या जो हम सुनवाने जा रहे हैं? कहीं यही गाना तो आपने नहीं याद किया, या कोई और गाना हो तो वो भी बताइए। और ये गाना सुनते सुनते जरूर बताइए कि किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। फिल्म है सावन को आने दो।

सावन क्वानेदु फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने पूछा था किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। अरुण गोविल और जरीना वहाब, हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और तस्वीर से जुड़े हुए गानों के बोल भी लिखे। तस्वीर बनाता हूं तस्वीर नहीं बनती, ये बोल कई श्रोताओं ने लिखा है। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, और सावन को आने दो फिल्म का नाम था, हमारे श्रोताओं ने बताया है। और फिर एक श्रोता लिख रहे हैं तस्वीर बनाता हूं, फिर एक श्रोता लिख रहे हैं कि दूर गगन की छांव और खुले आसमान के नीचे रहने वाले को ही पता होता है कि तारों को गिनना और अंधेरी रात में चांद देखने का मजा ही अलग होता है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि तस्वीर तेरे दिल मेरा बहला न सकेगी, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे, तुम मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये गाने के बोल यही लिखे हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा कि सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, और चलो दिलदार

है कि ऐसा ही एक गाना है मुकेश की आवाज में, कौन सा गाना है जिसमें दीवानापन शब्द आता है, और शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है, फिल्म का नाम आपको बूझना है। तो एक ये पहली होगी, दूसरी पहली कि कौन है हीरो हीरोइन इस गाने में।

महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना था और हीरो हीरोइन का नाम हमने पूछा था, राजेश खन्ना, लीना चंदावरकर। और एक पहली और पूछी थी जो ये थी कि मुकेश की आवाज में एक और ऐसा ही गाना है, ऐसा नहीं मतलब जिसमें दीवानापन शब्द आता है, और उसमें फिल्म का नाम हमने पूछा था और गाने के बोल। मुकेश की आवाज में गाना है जिसमें दीवानापन शब्द आता है, गाने के बोल बताइए फिल्म का नाम। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। हिंट के लिए हमने आपको ये बता दिया। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत दिल को छू लेने वाली है, ये बात हमारे कई श्रोताओं ने लिखी है। आप सभी से एक गुजारिश है कि आप प्रार्थना करें कि मैं जल्द ही भारत आ सकूं और विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपके दर्शन कर सकूं। क्या बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप विदेश से अपने देश में लौटना चाहते हैं, और ये मेरा बहुत बड़ा सपना है, ये लिख रहे हैं। आपका सपना पूरा हो, हम शामिल हैं आपकी इस दुआ में। और हमारे और भी श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अब तो जिम्मेदारियों का बोझ है, पहले हम तारे गिनते थे, आसमान साफ होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब छोटे भाई बहन एक साथ खेलते थे तो बोलते थे ये हिस्सा तारे का मेरा है, फिर हम आपस में एक दूसरे से कहते थे कि मेरी तरफ के तारे ज्यादा हैं, फिर करते करते लड़ाई हो जाया करती थी। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि गर्मियों के दिन में गांव जाने पर जब छत पर सोते थे तो बीच रात में अजिया माँ काकी को उठाने लगती थी, सात डरिया सप्तऋषि दिखाई दे रहा है, भोर होने वाला है। क्या बात है भाई, तब तारों से चांद से ही समय का अनुमान लगा लिया जाता था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में चांदनी रात की खामोशी है, खिड़की के बाहर टिमटिमाता तारा, मेज पर रखी पुरानी तस्वीर बरसों बाद धड़कती है। तो जो मैंने इबारत लिखी है उसकी समीक्षा इन्होंने कर दी है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेम में दीवानी प्रेयसी, चांद तारों में प्रियतम की तस्वीर देख उसका इंतजार कर रही है, दिल में उठा दर्द आंखों से बयां हो रहा है। कौन सा गाना आपने सोचा था कि अब बजेगा, ये जिसमें इबारत में कौन सा शब्द आता है ये भी बताइएगा। फिल्म शगुन, आपको पहचाननी है आवाज किसकी है, किसकी आवाज में ये गाना है और संगीतकार का नाम भी। संगीतकार और जिनकी आवाज है उनसे एक खास रिश्ता भी है, जरा बताइएगा।

0: शगुन फिल्म का गाना जगजीत कौर की आवाज, साहिर उद्यानवी के बोल, खयाम का संगीत। सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है, लेकिन एक सवाल और पूछा था कि जो संगीतकार हैं और गायिका हैं, इनका खास रिश्ता था, इसके बारे में हमारे श्रोताओं ने नहीं बताया। इसके जवाब का भी हमें इंतजार रहेगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि मजबूरी से दिल तोड़कर चले जाने वाले उस सपनों के सौदागर का प्रेम धागा इतना पक्का था कि प्रियतमा के रूह में सदा के लिए फंस गया था। और एक श्रोता ने लिखा है कि ममता जी आज की अधूरी इबारत को पूरा नहीं करेंगी क्या? भाई, ये तो इबारत को पूरा तो आपको करना था, हमने तो आपसे ही पूछा है शुरुआत में, कार्यक्रम की शुरुआत में, कि अंत क्या चाहते हैं आप, कि वो जो दरवाजे की दस्तक हुई थी वो आ जाए या नहीं, तो आप बताइए कि क्या करना है। वैसे दुख का अंत सुख से होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। सुनिए ये प्यासा फिल्म का गाना, बुझिए हीरो हीरोइन का नाम और आवाज किसकी है ये भी बताइएगा।
1: हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो।
0: दो आवाजें हैं, दोनों के नाम

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें थी। पूछा था हमने, सभी ने सही जवाब दिया है। सायर लुधियानवी के बोलते सचिन देव बर्मन का संगीत था, फिल्म थी प्यासा और माला सिन्हा गुरुदत्त के अभिनय से सजी थी फिल्म। हमारे श्रोताओं ने यह भी सही बताया। और एक पहली हमने आपसे पूछी थी कि मेरे दीवानेपन की कोई दवा नहीं महबूब की मेहंदी, और पूछा था कि एक और गाना है जिसमें दीवानापन शब्द आता है, सभी ने सही जवाब दिया, यहूदी फिल्म ये मेरा दीवानापन है, मुकेश की आवाज। और हमारे कई श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत में जो कहानी बुनी बहुत पसंद आई। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये जो आज की कहानी थी, अगली बार जब आइएगा तो ऐसी ही कोई कहानी लेकर आइएगा। क्या बात है भाई, लेकिन कहानी का अंत आप सबने बताया नहीं। हमने पिछली दफा भी कहानी का अंत पूछा था, आप सभी ने बताया था वही अंत हमने किया था, लेकिन आज हमारे श्रोता हम ही से पूछ रहे हैं। तो चलिए अंत, फिर अंत में जो लाइन लिखी है उसी लाइन से हमें समापन करना पड़ेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि ये रचना केवल बिछड़ने का रोना नहीं है, बल्कि ये एहसास कराती है कि सच्चा प्रेम पाना या खोना नहीं, बल्कि किसी को अपनी रूह में हमेशा के लिए संजो लेना है। प्रेम का पैगाम कबूल हो गया है तो दोबारा भेजने की जरूरत नहीं होती। तो चलिए, अब जब असली प्रेम सच्चा प्रेम होता है तो दुख दर्द कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन इबारत का अंत यही था, तो इसी गाने से अंत करते हैं। फिल्म का नाम जरा बता दीजिए, क्या है फिल्म का नाम, और गीतकार संगीतकार का नाम पता है

शहनाई फिल्म का गाना था, आशा भोसले की आवाज थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना। सुरीला सफर का ये सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनो
1: ओ?
0: जरा राइमा की फीस भरने चले जाना, आज आखिरी तारीख है।
1: देखो मैं 3 बजे नहीं जा पाऊंगा।
0: क्यों क्यों नहीं जा सकते?
1: वो मैं
0: साहब बताओ क्या करना है 3 बजे?
1: करना नहीं है, सुनना है।
0: ऐसा क्या सुनना है तुम्हें? पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ।
1: वो मुझे सखी सहेली सुनना है।
0: तुम्हें सखी सहेली सुनना है? पर वो तो सखियों का प्रोग्राम है।
2: सखियां ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
3: सखी सहेली।

0: सहेली
1: नमस्ते सभी सखियों को सभी सखियाओं को सभी सखाओं को और सुनने वालों को स्वीकार कीजिए चंचल वर्मा का नमस्कार।

0: और दीपा बैठी है मेरे सामने। कैसी हो दीपा?
1: बिल्कुल ठीक। और हमारे सभी साथियों को यानी हमारे सखियों को
0: हेल्दी नमस्कार।
1: हाँ बिल्कुल, हेल्दी नमस्कार देना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम लगातार ना उस प्रेरणाओं में रहें, इंस्पिरेशन में रहें।
0: हाँ।
1: ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम आपको दे रहे हैं, आप भी हमें देते हैं
0: जी।
1: हमारे साथी देते हैं जो हमें सुनते हैं, उनकी तरफ से भी। और अगर कभी कहीं कोई भूल चूक हो जाए और इन दिनों ये दिन ऐसे चल रहे हैं, अगर कहीं थोड़ा सा भी आलस आ रहा हो ना, तो फिर से ऐसा लगता है कि हाँ हमारे किसी एक दोस्त ने कहा है अपनी सेहत का ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, लगातार इस बात पर अपना ध्यान रहे कि अपनी सेहत का और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उसके साथ कोई हल्का फुल्का उसे कहीं हल्के में ना ले,
0: कोई समझौता नहीं करना है। और आपके कहने से पहले ही मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि हेल्दी नमस्कार आएगा, इसीलिए बहुत उत्सुकतावश मैंने कह दिया।
1: तो एक बार फिर से अपने साथियों को, सखियों को और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: चलिए और बता दें कि आज किस विषय पर हम बात करेंगे। देखो, सुंदर दिखने का शौक अगर सबको होता है तो सुंदर फोटो आए ये भी शौक सबको होता है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि हम यूं ही बैठे हैं, किसी ने फोटो खींचने का अंदाज उसका इतना अच्छा था ना, तो वो फोटो देखकर हमें लगता है कि उस दिन तो मैंने कोई तैयार भी नहीं हुए थे, हम बाल भी नहीं बनाए थे, और कई बार हम जिस जगह पर बैठे होते हैं वो भी बहुत खूबसूरत नहीं होती। लेकिन ये फोटोग्राफी का कमाल है कि आपकी जो छवि है वो उभर कर इतनी सुंदर सामने आती है कि लगता है कि तारीफ कर दो जिसने फोटो खींची है।
1: ये बात तो बिल्कुल सही है। और वो जो सुनहरे पल कैद हो जाते हैं हमेशा के लिए, और फिर जब कुछ सालों के बाद हम एल्बम खोल के देखते हैं, वो वक्त याद करते हैं, तो भाई ये आविष्कार कितना ऐतिहासिक है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और बहुत सारे संदेश इस विश्व फोटोग्राफी दिवस के लिए आए हैं।
0: और एक समय था ना कि कई बार जब कैमरे से फोटो क्लिक होती थी तो हम इंतजार करते थे कि कब वो पूरी रील पहले खींची जाएगी, फिर से धुलाई पे जाएगी।
1: हाँ।
0: और फोटो जब डेवलप होके आएंगे तब हम उन्हें देखेंगे। लेकिन अभी जिस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में, जिसे हम मोबाइल के नाम से जानते हैं, आपने जैसे ही क्लिक किया आपके हाथ में फोटो होता है
1: जी।
0: अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं तो आपके पास उसे भेजने के यानी कि एक दूसरे के साथ शेयर करने के ऑप्शन भी होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब धुलाई करवाएंगे इतना इंतजार ही नहीं करना होता, और तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आप तुरंत जाकर प्रिंट भी ले सकते हैं उसका, अगर आपको एक हार्ड कॉपी यानी कि अपने पास में रखनी है। आपको कई बार लगता है कि कहीं कोई डिलीट ना हो जाए, तो उसे हमेशा के लिए अगर सुरक्षित रखना है तो बहुत लंबा समय इंतजार नहीं करना है।
1: बिल्कुल सही कहा। और जो डिलीट वाली बात कही है ना आपने, दिल में कहीं कुछ ऐसी भावनाएं आ जाती हैं कभी कभी चंचल, जो हमें डिलीट कर देनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: यानी कि जो नफरत की, क्रोध की भावनाएं हैं उन्हें भुलाकर हमेशा अपने दिल में एक इंसानियत की, जो मानवता की भावना है, दूसरों का भला करने की भावना है, उसे हम सहेज कर रख सकते हैं।
1: बिल्कुल सही, ताकि हम आगे जो जीवन में चले तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यानी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े, और खुशियों को और मन की शांति और सुकून को प्राथमिकता देते हुए आगे निकलते चले जीवन में। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए देखिए, आज है विश्व मानवता दिवस,
0: और यही हमने शब्द लिया है जब हम बात करेंगे कि शब्द हमारे और विचार आपके, तो मानवता को लेकर हमारे सुनने वालों के क्या विचार हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, वो हमें जरूर लिखकर भेजें। तो मानवतावादी दिवस के बारे में भी बात होगी और मानवता के बारे में हमारे सुनने वालों की सोच क्या है इस बारे में ही बात होगी।
1: और साड़ियां पहनना कैसा लगता है, ये विचार अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या पसंद है आपको साड़ी पहनना?
0: भाई महिलाओं को साड़ी पहनना पसंद ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, और खास मौके जब आते हैं ना। वैसे हम जो भी कैजुअल कपड़े जो होते हैं हम पहन लेते हैं, कई बार सलवार सूट पहनते हैं, कई बार हम जीन्स टॉप भी पहनते हैं, कहते हैं कि वेस्टर्न आउटफिट कभी करने का मन करता है। लेकिन जब कोई खास मौका हो, किसी से मिलने जाना है, घर पे कोई उत्सव है, कोई त्योहार है, या कभी मन में लगाना कि नहीं आज कुछ मन में खास बनने का अवसर है, तो उस वक्त सबसे पहला परिधान जो हमारे जहन में आता है वो होता है साड़ी।
1: बिल्कुल।
0: और इतने सारे प्रकार है ना साड़ी के कि कई बार चुनना मुश्किल होता है, लेकिन अलग अलग मौके के हिसाब से साड़ियां चुनी
1: जा सकती है, जैसे कि सावन के महीने में लहरिया साड़ी।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, और लहरिया साड़ी की ही आज हम बात करेंगे। लहरिया साड़ी राजस्थान में तो बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन आजकल हर जगह ये पहुंच चुकी है, तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं इसके बारे में जरूर हमें बताएं कि हमारी सखियां किस तरह से लहरिया पहनती है, या उनके वार्डरोब में साड़ी है कि नहीं
1: है या नहीं। और जिस दिन आपको साड़ी पहन के कहीं जाना है तो फिर घर में एकदम अफरा तफरी होती है ना कि भाई मुझे जाना है, अब हम जल्दी नहीं आ पाएंगे, तो ऐसे में कुछ झटपट बना के रख दें, खिला दें घर में जो पीछे परिवार में बच्चे रह गए हैं या पतिदेव रह गए हैं या कोई और परिवार के सदस्य, तो क्या झटपट बनाया जा सकता है। कुछ संदेश आए हैं, हम चाहते हैं आप और कुछ रेसिपीज भेजिए।
0: हमारी सखियां बड़ी होशियार हैं, वो इस तैयारी में होती है कि आज जल्दी से कुछ बनाना है, तो उनके पास उनके पिटारे में झटपट वाले कौन से व्यंजन होते हैं, खासतौर पर जो स्नैक्स के आइटम होते हैं, तो वो हमें लिखकर भेजें। तब तक एक गाना सुन लेते हैं सबके साथ।

0: दीपा, हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये जो समय है, ये तन्हा ना बीत जाए, इसमें सबको साथ लेकर हमें चलना है और कई बार अपनी यादों को भी साथ संजो कर चलना होता है। फोटो उसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, जो हमारी तस्वीरें होती हैं पुरानी
1: जी।
0: वो हमें उन यादों से जोड़े रखती हैं, हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं उनसे भी जोड़े रखती हैं। तो कई बार मन में आता है कि फोटोग्राफी क्या चीज है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि फोटोग्राफी रोशनी का इस्तेमाल करके चित्र बनाने की एक कला होती है और 19 अगस्त का दिन होता है, इसे विश्व स्तर पर फोटोग्राफी के रूप में हम मना रहे हैं आज भी, और विविध स्तर और रचनात्मक तरीकों से फोटोग्राफी की कला और शिल्प का इस दिन सम्मान किया जाता है।
1: अगर इसके इतिहास में थोड़ा जाएं हम चंचल, तो शुरुआत में फोटोग्राफिक प्रक्रियाओं में डेगोरियोटिप ये आविष्कार किया गया था,
0: बिल्कुल,
1: जिसे 19 अगस्त 1839 में फ्रांसीसी सरकार ने दुनिया को उपहार के रूप में ये घोषित किया था।
0: और ये उपहार देखो ना कितना बहुत

0: अब काम की चीज बन गई हमारे।
1: बिल्कुल। तो ये लुई और जोसेफ निप्स, इन दोनों ने मिलके इस टाइप को, ये
0: जो आविष्कार है,
1: ये जो आविष्कार है, इसको विकसित किया था और इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने हमारी और आपकी छवियों को कैप्चर करने और उससे सुरक्षित और हमेशा संरक्षित रखने के लिए, आप यूं कहें कि एक क्रांतिकारी बदलाव आ गया है।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: हम सबके ही जीवन में,
0: और इसी की याद में तो आज का दिन हम मना रहे हैं। और ये दिन जो इस आविष्कार का सम्मान करता है, फोटोग्राफी को इस तरह से मतलब पेश करता है, और सदियों में ये विकसित हुआ जिसने कला, विज्ञान, पत्रकारिता, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति सभी को प्रभावित किया है। फोटोग्राफी की दुनिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां वो जो अपना जुनून है, अपना शौक है, उसे साझा भी करते हैं, और जो उनका काम है इसके माध्यम से सबकी वाहवाही भी बटोरते हैं इसे दिखाकर, है ना।
1: अब अगर कभी पूछा जाए कि एक तस्वीर क्या है, तो एक तस्वीर किसी स्थान या अनुभव या विचार या किसी समय को जब कैद कर लिया जाता है, उस क्षण को, उसे एक हम तस्वीर कहते हैं। भाई अगर कभी पूछ लिया किसी ने ये सवाल, तो हम कम से कम परिभाषा तो दे सकते हैं, है ना।
0: जी, सही कहा।
1: और फोटोग्राफी के रूपों का सम्मान करते हुए हर साल एक वैकल्पिक थीम के साथ इस दिन को मनाया जाता है। तो इस साल का जो थीम है वो है घर, यानी हमारा हाउस होम जो हम कहते हैं। तो ये थीम उस स्थान या उस एहसास को दर्शाती है जिसे हम अपना घर मानते हैं, जहां आप रहते हैं, या आपका कोई, आपका गृह, आपका देश, या वो स्थान जिस जहां आपको अपना सा लगे, एक सुकून भरा महसूस हो, तो ये थीम है। तो आप घर को लेकर के तस्वीरें अलग अलग खींच सकते हैं और सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह पर आज के दिन उस फोटोग्राफ को शेयर कर सकते हैं।
0: और देखो, हमारे सुनने वाले लिख रहे हैं कि ये अद्भुत कला बीते हुए पलों को, भावनाओं को, यादों को हमेशा के लिए सहेज लेती है। अच्छी तस्वीर केवल एक दृश्य नहीं दिखाती, बल्कि अपने भीतर एक पूरी कहानी, एहसास और पूरा समय समेटे हुए रहती है। फोटोग्राफी ने दुनिया को देखने और समझने का नजरिया भी बदला है। तस्वीरें समय को रोक नहीं सकती, लेकिन बीते हुए समय को हमारी यादों में हमेशा के लिए जीवित रख सकती हैं, और ये बहुत अच्छी बात लिख कर
1: दीजिए। बिल्कुल। और एक संदेश और आया है, बड़ा प्यारा सा। ये संदेश में कहती है हमारी सखी कि सच, कभी कभी हमारा ऐसे ही खींचा गया फोटो इतना अच्छा होता है कि उसके सामने बहुत ही मन ठन के खींचे गए फोटो बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। मतलब हम कभी कभी बिल्कुल तैयार होकर के खड़े होते हैं कि हाँ, हमारा क्लिक करना चाहिए फोटो, लेकिन एक कैजुअल वाले जो पिक्चर हैं, फोटो खींची हुई, वो बहुत सुंदर लगती है उसके सामने।
0: और एक संदेश में बात लिखी गई है कि तस्वीरें बीते हुए कल और इतिहास को सुरक्षित रखती हैं। तस्वीरों की कोई भाषा नहीं होती, ये बिना बोले सब कुछ कह देती हैं। ये बिना बोले सब कुछ कह देती हैं, और अपने नए दिन और पुराने फोटोग्राफरों को अपनी कला दिखाने का मौका देती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश कहता है कि पहले के समय में हमारे देश में लोगों के पास कैमरे नहीं होते थे, कैमरा बहुत महंगा हुआ करता था, उसकी रील भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाली होती थी, और फोटो खिंचवाने के बाद धुलवाने के लिए स्टूडियो में जाना पड़ता था, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, और तब जाकर के फोटो मिलते थे। अच्छी आई या बुरी वो तो बाद की बात थी, फिर कलर फोटो खिंचने लगी और पहले स्टूडियो में जाना पड़ता था फोटो खिंचवाने के लिए। आज के समय में मोबाइल से ही फोटो खींचे जा सकते हैं, किसी के पास भेज दो, कोई टाइम नहीं लगता। अब तो लोगों के पास मोबाइल है, कैमरे बहुत कम लोगों के पास, लोग भी बहुत कम रखने लगे हैं, और वो भी उन्हें जिन्हें कैमरे का शौक है, या वो जो कि इसको प्रोफेशनली इसको लेते हैं, वो लोगों के पास कैमरे होते हैं।
0: लेकिन उन कैमरों में भी आजकल ये एक सुविधा आने लगी है कि आप तुरंत उसको डेवलप करा सकते हैं। पहले जो कहते हैं कि इंतजार करना पड़ता था ना, जो इंतजार की घड़ियां हैं वो लोगों की कम हो गई हैं। कई बार हम शादी में भी देखते हैं ना, फोटोग्राफर जब तस्वीर खींचते हैं तो चार पांच फोटो एक साथ में खींच लेते हैं और फिर आपसे सेलेक्ट करवा लेते हैं कि किस फोटो को फाइनल करके रखा जाए।
1: बिल्कुल।
0: कई बार तो कि आंखें बंद हो गई, कहीं आप यहां वहां देख रहे होते हैं, तो वो फोटो, पहले ऐसा ये सुविधा हमारे पास नहीं थी। अगर आपकी तस्वीर में आंखें आपने बंद कर ली, झपका दी, या आप कहीं इशारे से कुछ कह रहे हैं, आपका जहां का तहां है वही रह जाएगा।
1: हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। और आज के दिन क्या क्या होता है, तो आज के दिन पे फोटोग्राफी की कला और शिल्प का सम्मान किया जाता है। चंचल दुनिया भर के फोटोग्राफर तरह तरह के प्रदर्शनियां प्रदर्शनियों में भाग लेकर के अपने काम को चित्रित करते हैं, फिर अलग अलग वर्कशॉप्स होती हैं, कई जगह पर ऐसा होता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं जिसमें फोटोग्राफी के बारे में जानकारी दी जाती है, फिर फोटो वॉक करने वाले और टूर फोटोग्राफी के शौकीन को पास आसपास के स्थानीय लोगों का पता लगाने और उन्हें कैमरे में कैद करने के लिए भी एक साथ ले जाया जाता है। तो ऐसा भी होता है कि आपको

0: थी और हमेशा खास ही रहेंगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि तस्वीरें बीते हुए कल और इतिहास को सुरक्षित रखती हैं। तस्वीरों की कोई भाषा नहीं होती, बिना बोले सब कुछ कह देती हैं। और ये दिन नए और पुराने फोटोग्राफरों को अपनी कला दिखाने का मौका देता है।
0: हमारे एक संदेश में लिखा गया है कि एक समय था जब राजा रजवाड़े या बहुत धनाढ्य परिवार के लोग होते थे, उनके पास कैमरा होता था या फोटो का चलन उस समय ज्यादा था। फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया, वैसे वैसे सुविधाएं भी सुलभ होती गईं, जैसे सामान्य मानवीय तक फोटोग्राफी का जमाना था, पर्यटन, धार्मिक स्थल और सभी जगह फोटोग्राफी होने लगी और ये एक व्यवसाय था। जब लोग अपनी तस्वीरों को घर पर पोस्ट के द्वारा भेजा करते थे, ऐसे वक्त ने लोगों के साथ कैमरों को भी रखा और आज मोबाइल के माध्यम से जो चीज कभी दुर्लभ थी वो सहज हो गई है। तो चलिए अभी गीत सुन लें।
1: चलिए।

0: साथ ही आना, और मैं भी तुम्हें बुला रही हूँ दीपा सखी, बस आना क्योंकि बहुत सारे संदेश हैं, इन्हें भी पढ़कर सुनाना। तो पहले एक संदेश मैं ही पढ़कर सुना देती हूँ।
1: चलिए सुनाइए।
0: फोटोग्राफी की हम बात कर रहे थे ना, इस पर अपना एक किस्सा हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि कॉलेज के दिनों की उन्होंने बात लिखी है। कॉलेज में उन्हें एक कार्ड बनवाना था, उन्हें फोटो की जरूरत थी। तो शहर के पास, आगे लिखते हैं कि शहर के पास ही हमारी दुकान थी, उसके पास में एक फोटो स्टूडियो था। उसमें दोनों पिता पुत्र काम किया करते थे, लेकिन उस दिन लड़के के पिता दुकान पर नहीं आए थे। और उसी दिन क्योंकि मुझे फोटो की जरूरत थी और उनके लड़के के साथ मेरी आपस में बनती नहीं थी, लेकिन वो लड़का बोला कि मैं तुम्हारी तस्वीर अच्छी बना दूंगा। लेकिन मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि शायद भूतकाल में उनके साथ ऐसी कुछ घटना हो चुकी थी उसके साथ में। लेकिन उस लड़के ने विश्वास दिलाया कि वो फोटो अच्छी लेगा, तो

0: डरते डरते उसकी बात पर विश्वास करके वो तैयार हो गए फोटो खिंचवाने के लिए। और जब वो तस्वीर ले रहा था लड़का, तो वो बहुत मैं बहुत डरा हुआ था, घबराहट भी चेहरे पर थी और मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन कोई अनहोनी नहीं हुई, उसने तस्वीर मेरी बहुत अच्छी बनाकर दे दी। वो तस्वीर मेरे पास आज भी है, जब भी मैं उस तस्वीर को देखता हूँ तो उसमें मेरा चेहरा बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ दिखाई देता है।
1: देखिए कितने मजेदार उनकी यादें हैं ना तस्वीरों को लेके। और 1962 की एक याद हमारे श्रोता भाई यहाँ पे साझा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया की शादी का फोटो एल्बम बनाने पहली बार फोटोग्राफर को बुलाया गया था साल 1962 में। उन दिनों ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, हर जगह हर एक फोटो खींचने के बाद फ्लैश का लैंप बदलना पड़ता था। और उन दिनों मेरा बचपना था, तो 11 साल की उम्र थी उनकी। मंडप के बीच भाई भाभी के फोटो खींचते वक्त मैं भी हर फोटो में बीच में खड़ा हो जाता था।
0: और पहले ऐसा अक्सर होता था कि छोटे बच्चों को बड़ा शौक होता था कि वो हर तस्वीर में नजर आए।
1: हाँ,
0: और कहीं ना कहीं से वो झांकता हुआ चेहरा उनका नजर आ ही जाता था। पुराने एल्बम जब भी हम खोलते हैं ना, तो एक ना एक बच्चा ऐसा नजर आएगा जो हर फोटो में कहीं ऊपर से कहीं नीचे से अगल बगल से, या और जब तक फोटो उन्हें हटाया जाए वो फोटो क्लिक हो चुकी होती थी, वो एंड टाइम पर इस तरह से तस्वीर में घुस जाते हैं।
1: और ये देखो एक और मजेदार संदेश आया है, हमारी सखी कह रही है कि फोटो में तो ऐसी ताकत है कि सिर्फ फोटो देखकर ही 18 साल पहले मेरी शादी हुई थी। वो कैसे, उधर से फोटो कागज में लपेट कर आई और इधर से हमने कागज में लपेट के दे दी फोटो और बस हो गई शादी। क्या बात है भाई, ये जमाना कितना सुलभ और सुंदर और एकदम सादा सा था, है ना।
0: बातें आगे बढ़ाएंगे, पहले एक गीत सुन लीजिए।
1: चलिए।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं विविध भारती पर। इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और हमने बहुत सारी बातें फोटोग्राफी के बारे में की और आज एक और दिवस हम मना रहे हैं। 19 अगस्त के दिन मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस और ये उन लोगों की याद में मनाया जाता है दीपा जिन्होंने विश्व स्तर पर मानवतावादी संकट जो भी आए हैं उनमें या तो अपनी जान गंवा दी या फिर मानवीय उद्देश्यों के कारण और अपने दूसरों की सहायता के कारण उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया।
1: जी, और इसके पीछे अगर इतिहास जाने तो वो ये था कि 19 अगस्त 2003 को संयुक्त राष्ट्र कार्यालय पर हमला हुआ जिसमें करीब 22 मानवीय सहायता कर्मी मारे गए और जिनमें संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो वियरा डिमेलो भी शामिल थे। तो साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस इसके रूप में नामित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था और फिर ये प्रस्ताव स्वीडन ने रखा था।
0: और जिस दुर्घटना की या जिस हादसे की आप बात कर रही हैं, ऐसा माना जाता है कि अब तक जितनी भी त्रासदी हुई उनमें ये बहुत खतरनाक थी और करीब 4000 से भी अधिक राहत कर्मी ने इसमें जान गंवाई थी, उनको निशाना बनाया गया था और कि जो जानलेवा हमले हुए थे इसमें न जाने कितने घायल हुए, कितनों ने अपनी जान दे दी और कुछ गिरफ्तार भी हुए, कुछ का अपहरण भी हुआ। इस तरह की घटनाएं ना हो, मानवता लोगों में बनी रहे, इसीलिए ऐसे दिन मनाए जाते हैं ताकि जो भी अशांति संघर्ष है उससे अलग किया जा सके खुद को और एक शांति की स्थापना की जा सके।
1: बिल्कुल सही कहा। और ये देखिए ना, ये विश्व भर में फैली अशांति और संघर्ष में लाखों लोग अपने सरजमी से भी अलग हो जाते हैं और किसी अन्य जगह पर उन्हें स्थापित किया जाता है, तो ऐसे लोगों की संख्या आज ये अनुमान किया जाता है कि 6.5 करोड़ से भी ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को एक जगह दे दी जाए, उनके भी एक ठिकाना उनका हो जाए और उनका जो जीवन यापन है बराबर चलते जाए, तो ये भी एक उद्देश्य है मानवतावादी दिवस का।
0: और इस पर बहुत सारे संदेश भी हमें मिल रहे हैं। मानवता जो हमने एक शब्द दिया था कि शब्द हमारा है, विचार हमारे श्रोताओं को लेकर भेजने हैं, तो मानवता के बारे में जो विचार उन्होंने लेकर भेजे हैं, मानवता जो मानव से जुड़ी उसकी क्रियाशीलता को दर्शाती है कि वो दूसरों के प्रति कैसा भाव रखता है। मानवता के मूल में क्षमा, सहिष्णुता, दया, प्रेम, ये सभी भाव हैं जो आदमी का आदमी के प्रति उसकी सोच को दिखाता है। जिस समाज में हम रहते हैं वहां हमारे कुछ कर्तव्य हैं, उन सब में मानवता का भाव रखना सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी संवेदनाएं, हमारे परोपकार मानवता से जुड़े हुए विषय हैं, ये अलग नहीं है। दूसरों के प्रति दया भाव रखना, प्रेम रखना, अहंकार त्याग कर सरल ढंग से पेश आना, ये सब मानवता के ही स्तंभ हैं।
1: बिल्कुल। और एक और संदेश है, मनुष्य को जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा, दया, सहयोग, सद्भावना, आपस में मेल मिलाप की राह पर चलना चाहिए, नहीं तो कैसे मानवता महकेगी और वसुधैव कुटुंब की भावना होगी कैसे। तो विश्व हमारा परिवार है, ऐसी मानवता की महक और सार्थकता की आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत है।
0: बिल्कुल सही बात लिखी। इसी तरह से एक छोटा सा संदेश है लेकिन बहुत बड़ी बात कहता है कि मानवता कहने में कोई बात नहीं लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाने, किसी का हाथ थामने और बिना किसी के स्वार्थ के जब मदद करने में है, वही मानवता है। इंसानियत की सबसे खूबसूरत भाषा वही है जिसे बोलने के लिए शब्दों से ज्यादा एक संवेदनशील दिल की जरूरत है।
1: और एक और संदेश आया है चंचल, ये कहते हैं कि मानवता शब्दों और विचारों का वो सेतु है जो करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में पिरोता है। ये किसी भी संकुचित दायरे या सीमा से परे जाकर मनुष्यता के वास्तविक स्वरूप को परिभाषित करता है।
0: बड़े अच्छे अच्छे संदेश हमें मानवता के ऊपर मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता द्वारा जो बात कही गई है वो मैं पढ़कर सुनाती हूँ आप सभी को। मानवता और इंसानियत, जिसका अर्थ होता है किसी दूसरे के प्रति दया, प्रेम और भलाई करना, सभी के प्रति प्यार की भावना रखना, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों का हित सोचना। और वाकई में ये चीजें भी देखने को नहीं मिलती हैं। आगे लिखते हैं कि ये व्यक्तिगत व्यवहार से जुड़ा हुआ है, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव, यही मानवता है।
1: बिल्कुल सही। और आज के समाज में देखो मानवता को लेकर बहुत उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। कभी कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कहीं दुर्घटना हो गई, किसी संकट के समय लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। रक्तदान करना, गरीब बच्चों की शिक्षा में सहायता करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, पशु पक्षियों के प्रति दया रखना और पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी मानवता के रूप है।
0: बिल्कुल। आज जब विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को दीपा बहुत आसान बना दिया है, लेकिन जो कहते हैं ना कि मानवता, इसे तकनीक से हम जोड़ के देख ही नहीं सकते ना, कोई व्यक्ति कितना भी उसके पास धन है लेकिन वो उसके धन का वो सिर्फ अपने लिए ही सहेज कर रखता है, किसी की सहायता नहीं करता, तो कहते हैं कि उसके धनी होने का भी कोई महत्व नहीं है। अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, भले आपने बहुत सारा धन खर्च नहीं किया, आपने कोई छोटी सी ऐसी काम कर दी, छोटी सी ऐसी कोई बात कह दी जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। अगर मान लीजिए किसी दुखी को, दुखी दिल है, उसको सहारा दे दिया, सांत्वना के दो शब्द कह दिए, तो ये भी मानवता का परिचय देता है। हमारे समाज में मानवता के बहुत सारे उदाहरण है दीपा, जिसमें प्राकृतिक आपदा के समय या किसी दुर्घटना के समय जब लोग आगे आकर एक दूसरे की मदद करते हैं, रक्तदान करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो ये चीजें हैं ना, यही असली मानवता होती है।
1: हमारी एक सखी ने चार शब्द लिखा है मानवता के लिए, जियो और जीने दो।
0: क्या बात है, तो चलिए अब गाना सुन लेते हैं।

0: राम।
1: और भाई एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होनी ही चाहिए। जब कोई उत्सव होते हैं ना, तो ये भावना हमारे देश में सब जगह देखने को मिलती है। सब मिलजुल कर उस त्योहार को मनाते हैं। और महिलाओं में सावन के महीने का एक खास आकर्षण होता है। सब मिलकर सखियां साथ झूला झूलने जाती हैं।
2: बिल्कुल।
1: और तीज के दिन खास तौर पर लहरिया पहना जाता है। अभी हाल ही में तीज का त्योहार गया है, जिसे राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाया गया।
2: बिल्कुल।
1: तो जो राजस्थान की हमारी सखियां जो इस वक्त सखी सहेली कार्यक्रम सुन रही हैं, उससे जुड़ी हुई हैं, तो वो हमारी बात से जरूर सरोकार रखती होंगी कि उन्होंने भी लहरिया पहना होगा, नहीं पहन पाई किसी कारणवश, तो मन में मलाल जरूर रह गया होगी लहरिया नहीं पहन पाई।
2: तो कोई बात नहीं, इस दफा लहरिया साड़ी ले आए, क्योंकि सावन अभी बाकी है। तो और उसे पहन के खूब सुंदर सजे धजे और ढेर सारे तस्वीरें खींचे, और फिर अब तो कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म से आप साझा कर सकती हैं।
1: और जब आपने सजने धजने की बात कही ना, तो साड़ियों के बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। हर परिधान के साथ में एक अलग तरह का श्रृंगार किया जाता है।

0: है, जो ज्वेलरी हम पहनते हैं ना, जो जेवरात हम पहनते हैं, तो हर परिधान के साथ अलग तरह के जेवर पहनते हैं। अगर आपने बनारसी साड़ी पहनी है तो जेवर अलग तरह के
1: अलग
0: होंगे,
1: होगा
0: आपने सूती कोई साड़ी पहनी है तो
1: जी।
0: अलग तरह के होंगे, जॉर्जेट की पहनी है, लहरिया पहना है, अब लहरिये में भी आपने भारी भरकम पहना है या हल्का फुल्का पहना है, तो आपके जो श्रृंगार की चीजें होती हैं वो उस तरह से हो जाती हैं। बहरहाल हम बताते हैं कि लहरिया राजस्थान की एक पारंपरिक और बहुत खूबसूरत साड़ियों में से एक होती है, और इसकी खास पहचान होती है इसके जो लहरदार और तिरछे पैटर्न बने हुए होते
1: पैटर्न
0: हैं
1: जो
0: ना,
1: बने होते हैं जी।
0: और खास तौर पर राजस्थान की जो रंग बिरंगी संस्कृति उत्सव है, वहां की जो संस्कृति है उससे जुड़ी हुए ये परिधान होते हैं।
1: अब देखो ना चंचल, ये लहरिया, ये शब्द ही लहर से आया है।
0: हाँ
1: इसमें कपड़े को विशेष तरीके से मोड़ कर या बांध कर रंगाई की जाती है, जिससे कपड़े पर लगातार लहरों जैसी धारियां बन जाती हैं। और ये खास तौर पे टाई और डाई, यानी वो तकनीक, बंदेज या रंगाई, इसकी तकनीक का ही एक रूप है। और इस साड़ी के लहरदार धारियां इसकी खासियत के साथ इसकी सबसे प्रमुख पहचान भी है। लहरिया साड़ी ज्यादातर आप देखो तो एकदम चटक कलरों में होगी, है
0: हाँ
1: ना, पीली, गुलाबी, लाल, हरा, नीला, नारंगी, सारे जो चटक कलर होते हैं हमारे,
0: हाँ
1: वो इनमें इन साड़ियों को आप देख सकते हो। हालांकि आजकल अब थोड़े से इंग्लिश कलर, इंग्लिश टोन्स भी लेने लगे हैं, लेकिन फिर भी
0: जो
1: जो
0: पारंपरिक चीजें हैं,
1: पारंपरिक कलर जो इस साड़ी के साथ जाता है ना, गुलाबी पहन लीजिए आप, हरा पहन लीजिए, आहा,
0: जैसे
1: और
0: आपने पहना
1: लाल कलर
0: जो
1: की सुर्ख साड़ी हो तो क्या बात है।
0: आपने पीले कलर का अगर बेस है तो उसपे कुछ नारंगी या हरे रंग की
1: हाँ
0: धारियां होंगी, अगर
1: बिल्कुल
0: गुलाबी बेस है साड़ी का तो कुछ ज्यादा गहरे रानी रंग की या हरी सी कुछ धारियां, तो जो बीच में धारियों का रंग अलग होता है ना वो इसे और खूबसूरत बना
1: बिल्कुल
0: देता है।
1: खूबसूरत बना देता है। और शादी ब्याह में तो आप देखिए थीम रखने लग जाते हैं आजकल तो, कि एक किसी फंक्शन पे हम ये वाली साड़ी या इसका लहंगा बना करके पहनेंगे। और फिर देखिए जब चटक कलर में पारंपरिक नृत्य होता है तो उसका तो जो नजारा ही कुछ एक अलग आनंद देता है।
0: हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश हमें मिल रहे हैं। एक संदेश में कहा गया है कि लहरदार यानी लहरिया साड़ी मूल रूप से राजस्थान, विशेषकर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर यहाँ की पारंपरिक पहचान है। अपनी खूबसूरत लहरनुमा डिजाइन के कारण राजस्थान के अलावा अन्य जो राज्य हैं जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मुंबई, सभी जगह सावन, तीज और मेलों के अवसर पर यह बहुत पसंद की जाती है। राजस्थान की इस कला का ये मुख्य केंद्र है। यहाँ के स्थानीय त्योहारों में और रोजमर्रा के पहनावे में लहरिया का विशेष स्थान है। उत्तर भारत में सावन मास, हरियाली तीज, रक्षाबंधन के मौकों पर इन लहरिया साड़ियों का बहुत भारी क्रेज देखने को मिलता है, और गुजरात, महाराष्ट्र के पारंपरिक बाजारों में शादी ब्याह के उत्सव पर भी इनकी बहुत मांग रहती है। सावन और मानसून के मौसम में हरी, पीली, लाल और मल्टी कलर की लहरिया साड़ी पहनी जाती है, जो
1: अभी तो
0: जॉर्जेट,
1: बहुत
0: कॉटन
1: फैशन में है ये मल्टी कलर वाली
0: जी, और
1: जी।
0: अलग अलग फैब्रिक में लोग इन्हें पसंद करते हैं।
1: और हम अगला संदेश सुनाए चंचल, तब तक हम अपनी सखियों से भी पूछते हैं कि लहरिया साड़ी आपने इन दिनों में पहनी या नहीं पहनी, हमें जरूर बताइएगा। और सुनिए ये संदेश, ये भी यही बता रहा है संदेश कि ये टाई एंड डाई ये वाले कला से इसको बनाया जाता है, जिसमें पानी की लहरों की तरह तिरछे और सुंदर धारियों वाले पैटर्न बनते हैं। और राजस्थान का ये पारंपरिक पहनावा है। साथ में कह रहे हैं कि इसमें कपड़े को तिरछा मोड़ कर धागे से बांधा जाता है, फिर चमकीले रंगों से रंगा जाता है। पचरंगा लहरिया जो है उसमें 5 रंगों वाली विशेष डिजाइन होती है। यहाँ की सबसे पुरानी और लोकप्रिय शान है ये वाली स्टाइल। और प्रमुख प्रकार और रंग है लाल, पीला, हरा, गुलाबी, बहुरंगी शेड सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अगर कपड़े की बात करें तो ये संदेश कहता है कि जॉर्जेट, क्रेप, शिफॉन, सिल्क जैसे इन जैसे हल्के और जो
0: हाँ
1: लहरदार, जो एकदम बिल्कुल आराम से जो जिसे पहना जा सके, ऐसे वाले फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं। गोटा पत्ती का वर्क होता है, फिर तो त्योहारों और शादियों के लिए इस तरह महीन गोटा पत्ती या जरदोसी का काम इस पर किया जाता है। राजस्थानी सावन और उत्सवों के माहौल में सजी खूबसूरत लहरिया साड़ियां, ये ताजा डिजाइन आजकल खूब वहां के मार्केट में आप देख सकते हैं।
0: सिर्फ साड़ियां ही नहीं, जो पुरुष हैं वो दुपट्टे डालते हैं लहरिया कि जो दुपट्टे बनने लगे हैं, वो कुर्ता पायजामा पहनकर उस पर लहरिया पहनना, सिर्फ हम कहते हैं ना कि महिलाएं शौकीन होती हैं, तो लहरिया के जो दुपट्टे हैं जहां महिलाएं उनको शौक से पहनती हैं, तो पुरुष भी इसे बहुत चाव से अपने कुर्ते पजामे पर सजाते हैं।
1: और सिर्फ दुपट्टा ही नहीं, पुरुष तो उसके कुर्ते बनते हैं, शॉर्ट कुर्ता जीन्स के ऊपर आप पहनिए, देखिए क्या खूबसूरत लगता है।
0: इसके अलावा पगड़ियां भी पहनी जाती हैं। पगड़ियों में भी लहरिया होता है, जो पगड़ी जिस कपड़े की आप बांध कर पहनते हैं उसमें भी लहरिये का इस्तेमाल किया जाता है। एक अन्य संदेश में कहा गया है कि लहरिया इसके ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन और लाइट वेट होना ये हर उम्र की महिलाओं पर बहुत फबता है। हाथ से बनी असली लहरिया साड़ी रंग की शुरुआत, इसमें रंग जो है वो धुलाई में थोड़ा सा निकल सकता है क्योंकि ये टाई डाई से बनाई जाती है।
1: और लहरिया को एक प्रकार, एक संदेश में हमारी सहेली ने लिख भेजा है, एक दली यानी इसमें केवल एक ही रंग की लहरदार धारियां होंगी और इसमें 5 अलग अलग रंगों का इस्तेमाल होगा जो बेहद शुभ माना जाता है, जैसे कि लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी। और एक होता है, एक और प्रकार है मोठड़ा। तो जब लहरिया की धारियां एक दूसरे को काटती हुई चेक्स वाला पैटर्न बनाती हैं, मतलब एक तरफ से और दूसरे तरफ से जब आती है तो उसे मोठड़ा कहते हैं।
0: तो चलो वे गाना सुन लेते हैं, सुंदर साड़ियों की बात हो रही है, सुंदर गीत।

0: और देखो जब हम तुम दोनों मिल जाते हैं ना तो बहुत सारे संदेश लेकर आते हैं, और अब कुछ आगे संदेश की तरफ बढ़ते हैं। और हमने बात की थी ना कि कुछ छटपट बनने वाली जो चीजें होती है ना उनकी बात की जाए, क्योंकि कई बार हमारे पास समय की कमी होती है या अचानक से मेहमान आ जाते हैं, हमें कहीं जाना होता है और हम ऐसे ही किसी चीज की तलाश में रहते हैं कि झटपट ऐसी कोई चीज बना दी जाए जो स्वादिष्ट भी हो और इसे आहार बना रहे पेट में।
1: बिल्कुल सही।
0: सूजी के अप्पे ऐसे होते हैं जिन्हें झटपट बनाया जा सकता है। इसके लिए सामग्री क्या चाहिए हमारे श्रोता ने हमें लेकर भेजी है। 1 कप सूजी में 1/2 कप दही और 1/2 कप पानी डालकर एक गाढ़ा घोल बना लीजिए। इसमें 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, घिसा हुआ गाजर मिलाएं, 2 हरी

0: और हरा धनिया भी काट कर डाल दें। अब ये जो सब्जियों की सामग्री बनाई गई है, इसमें आप जो चीजें नहीं खाते हैं उन्हें आप ना डालें, और कुछ स्वाद के लिए और चीजें डालना चाहते हैं तो उन्हें आप जोड़ भी सकते हैं। आगे इसे बनाने के लिए रेसिपी है कुछ इस तरह से है कि एक छोटे पैन में एक चम्मच गर्म तेल करके डालें, राई, जीरा, नीम की छोटी पत्तियों का तड़का लगाकर इसमें एक गाढ़ा घोल तैयार कर दें। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। अब आधा चम्मच इसमें कुछ भी आप या तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इस तरह का कुछ भी डाल सकते हैं, और तुरंत अप्पे के सांचे में डालकर गर्मा गर्म फूले फूले अप्पे तैयार कर लीजिए। नारियल की चटनी या फिर हरे धनिया की चटनी के साथ में इसे परोसकर खाया जा सकता है।
1: बिल्कुल। और एक और ये रेसिपी भेजी हमारी सखी ने, भुट्टे की टिकिया बनाना बताया है कि कटोरी, एक कटोरी उबले हुए भुट्टे आप ले लें, मिक्सी में पीस लें, एक कटोरी उबला हुआ आधा आलू ले सकते हैं, आधा कटोरी पनीर, और इन सबको मिक्स कर लें। हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक वगैरह डाल लें, और थोड़ा सा चाहे तो शिमला मिर्ची डाल लें। सब कुछ मिक्स करके अपने हिसाब से मसाले डाल लें, टिकिया बनाकर इसे सेक लें।
0: और अभी गाना सुन लेते हैं।
1: चलिए।

अच्छा, अगर झटपट से आपको बनाना है, कोई अचानक आ जाए, तो आप ऐसा करिए कि थोड़े से पोहे को पानी के में अंदर से धो के उसको निचो लीजिए, और फिर जो उबले हुए अगर आलू पड़े हैं फ्रिज में तो उसको भी आप इसके साथ में मिक्स कर लीजिए, और फिर देखिएगा जब आप पोहा निचोड़ेंगे ना तो अच्छे से वो फूल जाते हैं थोड़ी सी देर के बाद। इसमें उबले हुए आप आलू डालिए, भुनी हुई अगर मूंगफली घर में है तो उसको दरदरा पीस के वो भी डाल लीजिए, एक ब्रेड का टुकड़ा पानी में भिगोकर उसे भी निचोड़कर मसलकर अच्छे से डाल दीजिए। अब बारीक

0: कटे हुए प्याज डालकर आप अगर खाते हैं तो बारीक धनिया पत्ती प्याज अगर खाते हैं तो वो डाल लीजिए, हरी मिर्ची डाल लीजिए और इसका एक थोड़ा सा डो जैसा मतलब आटे जैसा तैयार
1: हाँ, मतलब ये एक साथ नहीं खट्टा हो जाए,
0: हाँ टिकिया का टिकिया जैसा बनना है और बस आप टिकिया का उसका शेप लेकर के झटपट इसे आप चाहें तो फ्राई कर लीजिए या शैलो फ्राई कीजिए और देखिए बन गई आपकी बढ़िया सी टिकिया।
1: और बस हमारी सखियां ये टिकिया बनाकर खाएंगे क्योंकि समय हो चला है पूरा। हम लेते हैं इजाजत, दीजिए चंचल वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी को इजाजत,
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

करें हम दोनों आंखें चार, अरे आजा मेरे यार करें हम दोनों आंखें चार, आज है किस्मत जोरों पे कर हमसे जम के प्यार, नतीजा अच्छा नहीं।

प्यार करें हम दोनों आंखें चार, अरे आजा मेरे यार करें हम दोनों आंखें चार, आज है किस्मत जोरों पे कर हमसे जम के प्यार, नतीजा अच्छा नहीं।